0: भाई ब्रे म यहाँको ग्योर ग्योर पढ नि म भाइ
1: पुरोल मला ती मना मनुक
0: पुरोल आय आय आय देवीता पुरोग पुरोल
1: पुरोल लगे पुरोल
0: मायम लबक
1: इडिगोना
0: रे मन नंबर वन इज नाइट क्लब उसो गेम शूपुल
1: शूपुल
2: आपको बहाला नहीं है सर साबा को हाँ
1: Dilit
2: mong kuwi, nagwagaan na mong gani. Oh, ay, hakal, hala.
0: Nga nung aga, charito, abilar.
2: Na ay talinis, ugay, nga nitusok sa akong lupo.
0: Eh, bangga siya.